0: Re dina dhubuzga yunga tsu tatunga galimde kabar yungu kazgari dina chatungwa ga yunga kabar nda tsara koryoga dina tsamdani ji dhubundiga kabar nilinzga yil. Waya dhubu chu dimu?
1: Dimu asu tsirunga dhuma dimu.
0: Dimu yin dina dhubu yunangzga nga tsu galimde shikma tata?
1: ཨ་ཡོ་ནོ་གྱ་ཏ་ཤིག་མ་ཆུ་ནི་ལ་མ་དང་ལ་ཏ་ཡ་ནོ་གྱ་ཏ་ལ་མ་ཤི་བོ་ཨ་དེ་དེ་དེ་དེ་ན་དེ་རྒྱན་ཏ་ང་ཚོ་ལུང་ཆ་ན་ཉིང་གད་ཡོ་ནོ་གྱ་པོ་ཟེ་ན་ཆུ་ཨ་ལ་དང་ཡེ་ལེ་ཁུ་དེ་ཨ་དེ་ཡེ་ཏོ་པོ་ལ་ཇ་ཆུ་དེ་མོ་དེ་ན་ཚམ་དནི་དེ་རང་གལེན་ཚན་དེ་ཆི་ཐུམར་གོ་ཏ་ཡོ་ནོ་ལ་མ་སོན་ཐར་ཅིག་
0: अरे तिना टुपो ल जागा दातक तराज स्टेम बुजु मारको
1: औ चाई पुगा
0: अरे ताकुग चुमांगवा थेशोको
1: चाई पुगा
0: या
1: अमनते जनांगारो नि छजी चोचंग योबी तमी तमी दे ताकि तना थासो जेवा उचु ओजी सांखिन गंदर जिना छु ओजी आले मेजिन गंदर नना तंजे अजानी हाचो गानी ओचु ने दामासुमा गानी दोने आके जेवा छुजु मी तमो जेलो ताकि तना गोत्रिन गोत्र हम जे छबु सुनी माउ फाना ने कने छबु मोबी दास
0: अरे तिना अर्गनसन थार तंग लमु छुनि गलंगवि शपा गेपु से गुनु गलेंत छु तेगुं गलेन छन दिन नरा कोट गियो
1: आ ना ना थु जुलु लु छना यंचुर मारु जि ने जुरि वा बिसु नि
0: अरे तिना यंग लेन छन तमर तंग ना छगे जमर हाग पा यंग छु लेन छन द दि तातंग ग थंग जि मा गलेन छन नगा छु रे वा जेंस ग तोना
1: ཁས་ང་དེ་རང་དུང་ལེན་ཚོ་ཡོན་མ་རེ
0: अरे मंचंग बर पेज रे जिन रे तारंग पे के योन मार को
1: अरे
0: अरे तिना कातोते यंग दा जुर जिग नरे कातोते दा छु चालम नि थातुंग लाइन रे ति जे थातुंग आ तिरा रे छु नरे को
1: ओ या या या
0: या या अरे इंदने छि दातक के चेन ना साउज मकु ग जुपु ग जगे ज खापरा खा ཁལ
2: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁ 지자가 어때 지자가 다시 대론 소셔다 도공이 되라 쳐들이
0: 아리 거든치 디낭이냥하 안던즘바 쳐랑도마세라 디나디릉가 레이나 손터치게 렁구마세르케 초티네리 세르구누가 망렌데인
2: 어때 지레 또 회미 이화된다 때가 어때 지자가 삼절레스티 다시 대론 소셔다 더스커는데
0: 거든치
2: 다가 천다고 지금은 이 레이온 체다가 되게 자상에 돌아다시기 천다고 린잔든지 초장 못 하자 머린도도 그래
0: 야 디나 탕지마글린 천나가 앵치라 자항메 뚝속글그누 릉누가 근데 인잠튼 초서르그누가 랭땡 똑보체레와진다 고디라고
2: 오 자치데라 자치데라 카토
0: 디나 멘테든가 쳇된 천달라 냠버가세셰 디나 니크고디모
2: 오예 고예 코테 코테 카토
0: 야 카토 야 쪽부 남바디나 고니영 쪽부 망아스케 카퍼응데 땅알마 손터치케 릉고마 세르케 초테네 레세르고누가 망랜데 판스나 몬든글 치커고케 티나 참드니 아치 냠치케 알마 손터치케 릉고마 세르케 초테네 레세르고누가 망랜데 냠세지 주길